0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ପ୍ରଥମ ଗୀତଟିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲୋରା ମହାନ୍ତି, ଗୀତରଚନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଟେଲ।

0: दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
5: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने

0: विद्यार्थियों की एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
0: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन

0: हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुकारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
3: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

तबे तुम्हें जदि किसी न मगुच मो पाखे जहाँ सबुठ भल वस्तुटी अच्छी मुझ तुम उपर प्रसन्न हो जाए तो सहीटा देदे ठिया इंद्रद्युम्न महाराज कौन कहले कहले मई भक्ति स्थिरास्तु ते कहले हे इंद्रद्युम्न मई मान मोठारे ते मैने तुमर भक्ति स्थिरास्तु तुम भक्ति स्थिर होक रहू मोठारे तुम भक्ति स्थिर हो रहू आउ कौन आवश्यक अच्छे भक्ति रे भगवान वशीभूत होती यक रहीगले नहीं सांगे सांगे कहले कहले इंद्रद्युम्न महाराजा शुण तुम्हें तो किसी कहल नहीं आउ मुपरि कि नहीं मुझे जानूनी किंतु आज मुझको जोबले मुह खोली मु तुमको कहूँ शुण मोर तुम्हें दुईटी जात्रा करिवो जो जात्रा दुईटी मु स्वयं जीवि अर्थात आमर शास्त्र कहते जदि कौन सी मंदिर रे कौन सी मूल विग्रह थरे प्रतिष्ठित हो गले से आउ निजे आउ बाहर को बाहर ना तांकर विजय प्रतिमा माने आसीबे किंतु से निजे आसीबे नी किंतु सेति पई काले मते आउ एठारु बाहर करिवा को शास्त्रीय पद्धति अनुसार मते के ननेबे सेति पई स्वयं महाप्रभु तुंड खोली कहिले कहिले सुनो ज्येष्ठ मास पूर्णिमा तिथि मु जन्म होई आपण कहिले श्री जगन्नाथ महाप्रभु निजे कहते मु ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि जन्म होई तेणु सेटा मोर जन्मदिन यही यात्राटी मोर निश्चित करिव आउ ये यात्रा रे तुम्हें मोते नव स्नान वेदी को सेठी 108 गड़ु जल रे स्नान करेइब एवं ये सबू व्यवस्था मु करिछि कौन व्यवस्था करचंदी प्रभु ना मु मो स्नान पे गोटे कुओ खोली करी रखिछि मु आविर्भूत हबा पूर्वरु गोटे कुपटे खोली सही कुपर जल रे मते तुमे मो जन्मदिन रे स्नान करेइब आपण माने विचार करंतु स्वयं महाप्रभु ये क्षेत्र प्रति केते आकर्षण एवं से कहले मोर जन्म दिन होची ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि महाप्रभु कहिसंति एवं इंद्रद्युम्न स्वीकार भी कर जाइछंति एवं पूर्णी कहले कहले सुन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रे मोर गोटे यात्रा करिवो जो यात्रार नाम हम श्री गुंडीचा यात्रा ये यात्रा रे मध्य मते नब कोठी के नब मोर जन्मस्थान को नब मु जोठी जन्म हेतिली ये यात्रार नाम होची गुंडीचा यात्रा एवं मते तुम्हें कोठी के नब ना गुंडीचा मंडप को नब स्वयं महाप्रभु ये मंडपर नाम को गुंडीचा मंडप बोली निजे देइचंती यात्रा को गुंडीचा यात्रा बोली कहिचंती ये सब से ना देचंती ये नाम केही आउ देई नहंती स्वयं महाप्रभु कहउचंती गुंडीचा मंडपम नाम जत्राह मजनम पुरा अश्वमेध सहस्रस्य महावेदी तदा भवत अरे मु जते बेले अखिल ब्रह्मांडनाथ ब्रह्मांड माळ माळ होई मो लोमकूपे विराजई माळ माळ ब्रह्मांड मोर लोम मूळरे विराजमान करुछंति तथापि मु एही गोटिए ब्रह्मांड रे रहिछि जो ब्रह्मांड रे रहिछंति तेणु मु एठी जन्म हेछि आ मते आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे जन्मवेदी को नब आमे परवर्ती कथा प्रभाव को आगु को नबा किंतु वर्तमान जेहेतु मो पाखरे अछंति डॉक्टर कल्याणी नंदी महोदय मुझे निवेदन करुच्छे से परवर्ती धारा विवरणी प्रदान करंतु।

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं एहा होउछि लक्ष लक्ष श्रद्धालुंकर आस्था विश्वास और भक्ति रे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यह पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मानकर सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्त दायित्व, से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन होबा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय आमको मध्य केते गुड़िए दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़ो, जमीक तटका खाद्य खातु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करूँ। बाहर खोल में बिक्री होता खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होता खाद्य, माछी बसुवा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदो खातु ना। खाद्य खावा पूर्वर एवं पर तथा शौच हाँपर निज हाथ को साबुन भल भाव धुंतु। शरीर जल शुष्कतार रक्षा पाइबापी आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पिंतु, सर्वदा पायखाना व्यवहार करूँ एवं परिष्कार परिच्छन रुहतु। अलिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणे तेणे न पक डबिन व्यवहार कर। जरूरकालीन सहायता पूरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752221275 जोगाजोग करूँ एवं आंबुलांस 108 को कल कर। जय जगन्नाथ।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा द्वारा जनहितरे जारी।
2: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अति आनंदर कथा आमे वर्तमान देखी पारुचु गोटे शरथावली रे गोटे भक्त निजक हनुमान बेसरे सुसज्जित करी अति सुंदर भावरे नृत्य करुछंती। आउ एपटे नाकचणा द्वार, जो नाकचणा द्वार अपेक्षा करिछंती केतेबेले महाप्रभु एही पथ देई रथारूढ़ हेबा निमन्ते आगमन करिवे। आउ आमे मध्य देखुचु अति सुंदर भावरे गोटे मठ, जो मठर प्रत्येक वर्ष गोटे विराट बड़ धूपकाठी करिथांती महाप्रभुंक सेवारे, जो धूप एवं धूप प्रदान करिबा पाई तांकर पथकु सुसमित बा कुसुमित करिबा सहित सुगंधित करि ए वातावरण को आहुरी आनंद पवित्र भूतमय करिबा निमन्ते शरधा बाली, जो शरधा बाली होउछंती श्रद्धार बाली, जहार स्पर्शरे जो जगन्नाथ कोटि गैबलनाथंकर स्पर्शरे दांडर धूलि पवित्र पुण्यमय होइ उठिअछि। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरम। मनीष जीवन रे श्रद्धा हेउछि एक अपरिहार्य वस्तु, कारण आम मानक भितरे जदि श्रद्धा रहिब नाही, परस्पर प्रति जदि प्रेम रहिब नाही, तेबे जीवन जीवन होइ रहिब नाही। सेथि पाई तो प्रभुंकर बड़ भाई बलभद्रंकर रथ, जो रथरे रहिछन्ति दुई गोटी सुक पकी जहाँ होती श्रद्धा आ विश्वास, कारण प्रत्येक जीव मान भितर भल पाइबा जदि आम आपण ही ननेबा संसार को समस्त को जदि

0: ପ୍ରେମରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ନପାରିବା ତେବେ ସେଇ ଜୀବନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେ ପ୍ରେମର ଭାବଡ଼ରିରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ଯିଏ ଷାଠିଏ ପୌଠିର ଭୋଗକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁଠି ମାଟି ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଏଇ ଶରଥା ବାଲିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବ ଅନୁଭୂତିକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
1: ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଆମେ ପୁରୀର ଯେତେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାନିଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହଉ, ଗୁଆଲି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହଉ, ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହଉ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିକି ଆସୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାବୁ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ନାଚର ଆରମ୍ଭ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନାଚ କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବୁଝାଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ନାଚର ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଏ ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ କରିକି ଠାକୁର ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଠାକୁର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚୁ, ଆଉ ସେ ଭାବ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସେବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚ କରୁ।
2: ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ।
3: ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାରଣା, ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଢ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ।
2: ଆପଣ କେଉଁଦିନଠୁ ଆସିଲେଣି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଲା?
3: ଆମର ଆଜି ଆସିବାର କଥା, କାଳିଆ ଏମିତି କାଲି ଡୋରି ଲଗେଇଲା ଯେ ଆସିଲୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପହାଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ଚାହିଁ ରହିଛୁ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ।
2: ଆଉ ଏଇଠି କେତେବେଳୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଶରଦା ବାଲିରେ?
3: ଆସିଲାଣୁ 5:30 ଆସିକିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିଲୁ, ଏବେ 6:00 ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ।
2: ରଥଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ?
3: ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଛୁ
2: ରଥଯାତ୍ରାରେ ବି
3: ଦେଖିଛୁ, ଆଜି ଫେର ବି ଆସିଛୁ ସେଇ ବାହୁଡ଼ାଟା ଦେଖିବାକୁ। ଆର ବର୍ଷ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ, ବାହୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିଲୁନୁ, ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କାଳିଆକୁ ଭଲ ଦିନ ରାତି ସାରା ଦେଖିଲୁ, ଭଲରେ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ଦେଖିଲୁ, ସେ ବର୍ଷା ବି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ।
2: ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ଥିବେ, ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ?
3: ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେ ଖୁସି ତ ମାନେ ଆମର ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, କାଳିଆ ନାଁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।
2: ଧନ୍ୟବାଦ।
4: ଏବେ ତିନି ରଥ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କୁନି କଳାକାର ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା।
5: ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତନ୍ୟା ଘୋଷାଲ, ମୋ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି 5, ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି।
4: କିଏ କହିଲେ ତମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ?
5: ମୋ ବାପା।
4: କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଏଠି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ?
5: ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
4: ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତମ ନାଁ କହିଦିଅ।
5: ପୁନମ ଜେନା।
4: ଆଉ ତମ ନାଁ?
5: ସ୍ମୃତି ଆରାଧ୍ୟ।
4: ଆଜି କ'ଣ ଏଠି ତମେ ପରଫର୍ମ କରିବ?
5: ଓଡ଼ିଶୀ।
4: ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛ ଭଲରେ?
5: ମାଗିବୁ ଆମେ ଯେ ଆଜି ଆମକୁ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତୁ, କିଛି ମାନେ ଗରମ ଏତେ ନ ଲାଗୁ, ଆଉ ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢା ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ।
4: ଆଉ ତମେ କ'ଣ ମାଗିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ?
5: ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁ, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢା, ଆଉ ଗରମ ବି ନ ହଉ।
0: ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ସେ ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିରେ ରହିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆଜି କୁନି କୁନି କଳାକାର, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଲୀଳାରେ, ଏ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାରେ, ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବିନା ସକଳ ଯେ ବ୍ୟର୍ଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ନାବ ଭବ ଜଳଧୀର, ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଗୋଟି ଏକାକର୍ଣ୍ଣ ଧାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଗାଇଲେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇବ। ସତରେ ए संसारर जो मिछमाया संसार ए दुख जंजाळपूर्ण संसार मणिष जदि सेथिरु निजको टिकिए लागव करिव तेबी प्रभुंकर से चका चका आखिकु थरे अनाई देले सबकिछि हजि जाए मन भितरे तिबा सबकिछि भावना सबकिछि से कल्पना सब जहाँ आम प्रभुंकर चरण से निजक नियोजित कर दे था आज आम देखिपु से शरदा बालीर प्रांगण से भक्त माने श्रद्धालु माने जो माने संकीर्तन माध्यम रे हो कि कीर्तन माध्यम रे हो आउ ताठु बड़ी बड़ कथा हेउची जहाँ कि कहा जाइछि एड़े भाग्य मोर हेबो कि हेबी वृंदावन सरी सेवक आम जदि वृंदावन सरीकर सेवा न करि परिबु देखबे तांकर सेवा करथिबा से सेवक मानंको सेवा मध्य प्रदान करछन्ते शरदा बाली रे और एक स्वेच्छासेवक जो मैंने किए पा बांटुंट किए जदि कौन व्यक्ति आहत होती तुरंत चिकित्सा निम्ते नहीं जाखलित भाव किए समस्त दर्शक माने श्रद्धालु माने प्रभुंर लीला को दर्शन करेंगे तांखलित व्यवस्था मध्यम निजक समर्पित सेवा मध्यम से कला ठाकुर जहाँ को देखला मात्रे प्रभु निकटने अर्पण कर निजर मनोभावना को किए कहे प्रभु आपणकर से आखि चका चका आखि गोल किए कहे विशाल संसार गोल पंच महाभूत शून्य गढ़ा ए संसार ए विश्व संसार मध्य गोल तुम सृष्टिर सूर्य चंद्र समस्त गोलाकार से शून्य भितर केवल अनंत शून्य महाशून्य जो शून्य भितर बड़दाण्ड बड़ पंडा महाप्रसाद स्वर्गद्वार पति तपावन आउ शरदा बाली रे आमे एबे मध्यो देखुचु सुंदर श्रृंखलित भाव से जो नाकचणा द्वार निकटरे अनेक भक्त अनेक सेवा करुछंती जो सेवक गण से मानकर केवल प्रतीक्षा कारण गुंडीचा मंडप भितरे महाप्रभुंकर जो दैनंदिन लीला एबे मध्य चली रोसहम तो सरला खेचुड़ी भोग हम प्रभु अति व्याकुल भाव भक्त सहित मिलित होगापी पुनर्बार जो धाड़ी पहंडी रे आसबे आज पाग अत्यंत सुंदर रही गरम नहीं वर्षा नहीं मृदु मृदु पवन शीतलतार स्पर्श मन को आहुरी आनंदित करुच्ची आखि किंतु रही से ही गुंडीचा मंडपर नाकचणा द्वार निकट को केतबेले घंटर घंटुआ घंटुआंकर घंटनाद शुणाजीव आ प्रभु पहंडी हो धाड़ी पहंडी रे आसीबे प्रथमे सुदर्शन महाप्रभु तापरे बड़ भाई बलियार भुज बलभद्र देवी सुभद्रा आउ पछरे हली हली पाहुंड पाहुंड पकई मस्तक सुंदर सुशोभित टाइया बांधी आसीबे जगतर नाथ विश्व ब्रह्मांडर ठाकुर कालिया शांत जो शांतर प्रेम भितर रही जे जो भावना वास्तव में कहवा भक्ति होची से समर्पित भावना जीव जी व्याकुल नहले भगवान को मध्य पाइबा असंभव हो उठी थाए तेणु भागवतर से वृतासुर प्रसंगे सुंदर भाव में कहुई अजात पक्ष खग जेने माता लोड़ई अनुक्षणे क्षुदार्त होइण बाचोरी माता स्तन को आश्रा करी प्रवास प्रति प्रिया जेने मोमन लोड़ई देशने हे प्रभु कमल लोचन तोपदे रहु मोर मन से मन व्याकुल नहले प्रभु को पाइबा ता संभव हो न थाए प्रभु मध्य परीक्षा करुछंती मो भक्त मते केते अपेक्षा करिछंती आउ जेतिके प्रभु परीक्षा करुछंती सेतिके भावरे भक्त मानक मध्यरे तांकर मन भितरे भक्ति भावना अधिकरु अधिक तीव्र होइ उठुछि समस्त अपेक्षा करिछंती से खुदार्थ बाछुरी हेउ बा सी हेइ थाउ कोनोसी व्यक्ति जहाँ भितरे शोक भोक शोष किछि नाही केवल अपेक्षा प्रभुंकर लीलारे ए जो नित्य उत्सव नित्य लीला चली महाप्रभुंकर प्रथम यात्रा जो यात्रा होची आषाढ़ मासर आद्य आषाढ़ जो प्रापुर्ट रास रे निजक ये रास रस वैस ठाकुर तांकर रस रे निजक से आनंद को आस्वादन करिबा पाई प्रभुंकर जो नवरसर जो ठाकुर नव श्रृंगारर ठाकुर नव भक्तिर जी प्रतीक से महाप्रभु कालिया शांते कोटि कैबल्यनाथंकर जो यात्रा जो यात्रा होची जे गुंडीचा नामे यात्रा परम पावनी रथयात्रा नामे ख्यात हेब जे अवनी ये से अवनी जिकि रथयात्रा नाम भावे आज ख्याति अर्जन करिसंती सारा विश्व ब्रह्मांड रे ए ख्याति आज सुदूर प्रसारी सेति पाई कोण अनुकोणरु जो माने जो भक्त जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे प्रभु को श्रीमंदिर रे प्रवेश अधिकार नाही कारण प्रभु होचंदि सनातन धर्मर से आद्य ठाकुर जो ठाकुर को दर्शन करिबा पाई प्रभु को प्रत्येक व्यक्ति मंदिर भीतर को जाई पारि नथांदि से प्रभु को दर्शन करिबा पाई आज समस्ते एठारे आसी पहुंचि छंति
6: ओडिशा माटीरु विकासर भित्ति भारतर शिल्प अभिवृद्धिर शक्ति नालको महाप्रभुंक बाहुडा यात्रा ओ सुनावेश अवसररे सभीको अनेक अनेक शुभेच्छा
7: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिशार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि एथि सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे
6: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपनंकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा एही शुभ अवसररे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्रु प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री अपूर्व संभार पवित्र घोष यात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती आसंतु आपणंक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर
8: जय जगन्नाथ रथयात्रा हेउची भक्ति आनंद एवं आध्यात्मिकतार एक महापर्व भिड़ भितर जदि किसी जरूरी परिस्थिति उपजे किंबा कई असुस्थ हो पड़ती व्यस्त ब्रत हूँ ना तुरंत पूरी जिला चिकित्सालय कंट्रोल रूम को फोन करंतु नंबर हेउची 06752222175 एहा सहित आउ किछि जरूरी सहायता नंबर गुड़ी को मन रखंतु पुलिस आउ अग्निशम सेवा पई 112 एम्बुलेंस सेवा पई 108 स्वास्थ्य सहायता पई 104 शिशु सहायता पई 1098 महिला सहायता पई 181 ट्रैफिक सहायता पई 1099 एही समस्त नंबर मने रखंतु सुस्थ रहंतु सचेतन रहंतु एवं रथयात्रा को श्रृंखला सहित पालन करंतु जय जगन्नाथ
6: स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार
9: हाँ,
10: हाँ,
9: ये मुझे
10: भलो लगुची पसंद
11: आज प्रकृत श्रद्धा बाली रे जो श्रद्धार सहित आज भक्त माने समस्ते रथ टाणी अपेक्षा करिकरि रहिछंती केतेबेले महाप्रभुंकर सेही दिव्य रथरे ठाकुर माने आरोहण करिवे एवं रथ यात्रा आरंभ हो किंतु वर्तमान आमे देखिबा को पाउचे जे जो कर्डन करा जायछि रथ को गोटे इनर कर्डन करा जायछि ता भितरे तीनि रथ अति सुंदर भाव अच्छा सब परिष्कृत आज कौटी टिके नाकू ना अलिया ना कौन सी अपरिष्कृत जगह ना जहाँ को कहती शरदा बालीर बालिक टी मुंडे मारवापी जो कवि मैंने सब लिखिंट वास्तविक आज से रूप धारण कर शरदा बाली एवं आज गोटे अपूर्व दृश्य आम देखा पाच पवन खिलिखिली होकर प्रवाहित हो पवन रेग गति से मध्य मंद पड़ूना अति सुंदर भाव से पवन चली नवमंडल संपूर्ण भाव मेघ आच्छादन कर रखिंट आउ वर्षा मध्य सामान्य ना क्लांति कहीं अनुभव करूना अति सुंदर भाव आज पाग कारण जो आम देखि आषाढ़ मास शुक्लपक्ष द्वितीय तिथिर जो अवस्था थिला वर्तमान से अवस्था नाही से थिला संपूर्ण भाव कादुआ गुंडीचा कारण ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ

तुम्ह श्री चरण बिनु आन गति नाही, जगबंधु हे गोसाई। ये से पुण्य परिवेश जो परिवेश भितर अनेक श्रद्धालु माने भक्त सालबेगंकर सही

0: जगन्नाथ प्रेमी श्रद्धालु मानंक पाई कार्य करूछि एवं प्रतिटि परिवार रे ए वार्ता पहुंचिछि। महाप्रभु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्तंकर जगतपति जगतनाथ एक कथा को अंगीकार करिसंति। सर्वधर्मर व्यक्ति माने सर्वधर्मर मनीष माने गोटिए परिवार सदृश बड़दाण्ड रे आनंद को से माने उपभोग करुछन्ति।
1: बाबू वर्तमान दुई पटरे आउजि कि रहिले भक्त माने वर्तमान अपेक्षा करिसंति केतेबेले तालध्वज रथ आसिबो आमे संदर्शन करी निजर मन तन चैतन्य पवित्र करिबा संगे संगे चर्म चक्षु को निर्मल करिबु पवित्र वातावरण भितरे आमे आगो को माडी जिबु।
0: ए जो ज्ञान आसु से माने बडदांड को वर्तमान पिचु रास्ता बोली भाबु नांति बा धूलि दूसर बोली भाबु नांति। अनेक भक्त आम केन्द्र आगरे पद्मासन पकाई चेका पकाई बसी गलेनी आउ से माने थकी पड़ी दिन सारा प्रभु पाखरे दंडायमान हो दर्शन करिवारे से माने बसी जाई से बसीबा भितरे किंतु छाड़ी नाहंती तांकर से प्राण प्रिय ठाकुर चिंतन करिबा एक आराधना रे बसी केतेबेले मो निकटवर्ती हेबे से बड़ ठाकुर मु तांकर से दौड़ी स्वर्ण चूड़र से बासुकी नागर से स्पर्श टिके पाइबी ए कथा को से माने अपेक्षा करी रही छंती। शंख चूड़र स्पर्श टिके पाइबी ए कथा को से माने अपेक्षा करी रही छंती। वास्तव रे ए जो परिवेश बेल को बेल एक महार्घ परिवेश हो जाऊची आध्यात्ममय हो जाऊची पुण्य पवित्रमय हो जाऊची ए हौची महाप्रभुंकर दिव्य रथर आगमन रे समस्त जेपरी ओ निज को हजई दउछंती।
1: महाप्रभु माने जमती पाट डोरी बंधा होकरी जाऊे रथ को तांको दौड़ी मध्य जो बासुकी कहले नाग कहले नागुणी कहले ये जो भक्त भगवान मिलन
0: रे बंधन प्रिय ठाकुर जुगे जुगे बंधन हो रही आपण विशेषकर जगन्नाथ महाप्रभु को देखत शिकुली फिटा है जितेबले स्नान बेदी को आसवे पुणी गले अणसर घर भितर रही बंधन हो तापर पुणी आसिले रथरे बंधा हो रुंधा हो रही पुणी रथर फिटा हेले पुणी आड़प मंडपर बंधा हेले
1: भाव रज्जुर बंधन भाव डोरी बंधन भक्त भगवान मिलनर बंधन
0: तार ना हूँ रसिक शिकुली। हाँ। से रसिक शिकुली जदि बंधा टिके न हबो कालिया को निद हेबो नाही से सब ठिया पहुड़ रहूछ
1: रसिक नागर रसिक नागर
0: से शिकुली जो अंटा शिकुली ता हूँ रसिक प्रेम शिकुली तेणु से शिकुली भक्त पाई से आदि बड़ दांड रे ठिया पहुड़ होइकि रहउछन्ती आपण जानिछन्ती रथ
1: केवल भक्त मानंग पाई
0: असंता
1: भगवान से
0: काली थारु जो 3 दिन रहिबे ठिया पहुड़ महाप्रभु हेबे गोटिए कपड़ा केवल आवरण बेष्टन रहिब ये हूँ भक्त पाई नथिबो पलंक नथिबो निद्रा देवींकर आवाहन सेमिति कौनसी व्यवस्था नथिबो
1: भक्त कांगाल प्रभु भक्त पाई तांकर सबु किछि भक्त को छाड़ी देले तांकर किछि नाही।
0: आमे जेपरी बाहर को विदेश गले आमे जथा कथा करी चलेई देउ हौ जेमिति हौ बाहर को त आसीचु महाप्रभु आज आमरी परी सेमिति सबु कथा को से सही नेउचंती। तांकर गोटिए लक्ष्य रहिछि कर्म को सिद्धि करिबा यात्रा को सिद्धि करिबा खंडनाथ सर्व दुखा नाम गोटे उद्देश्य सबू खंडन करी दुख गुड़िक मो छुआ आसी मोर पाने आसी बड़दाण्ड को मु समस्त दुख को खंडन करदेवी ये कथा जिते दूर जाते खिया ठाकुर जो ठाकुर चारि थर दिन को षाठी पौटी हजार हजार लोकंर जो प्रसाद लोक मैंने पाँच अन्न व्यंजन तार नाम कहले के समय लगे बुझापी समय लगे से ठाकुर बर्तमान सुखिली बेघकई आसंता तीन दिन यही रथ उपर रे यार अर्थ कौन भक्तपाई से भगवान ना कौन कही
1: निश्चित भक्तपाई भगवान नीलाद्री को जो दिन विजय करे पर दिन जा हम नीलाचल बड़ा ता पूर्वर आ नीलाचल अबड़ा हम ना
0: आमे जदि दुई दिन गोटे दिन उपवास करूचे पर दिन अन्न पाइबापी के कष्ट आम
1: किंतु
0: आम महाप्रभु सबू सही जाती के पत्थर कर दियंती निज को दारु ब्रह्म सीए केवल ये भक्तंकर सुख दुखर कथा को बुझापी तांकर कथा को सी अवलंबन करनेक कष्ट
1: गोटे विराट मानने भजन कीर्तन करुँचव कि भाव एकत्रित होकरी सतृष्ट नयन अपेक्षा करते बड़ ठाकुर बलभद्रंकर से तालध्वज रथ आसबू आम देखू नयन पूरे देखू चर्म चक्ष।

0: पवित्र करू देखु ऊर्ध बाहू होकरी हाथ जोड़ी उदंड नृत्य करतन करौभाग्य अभाग्य बोली कहते यही हूँ भलपाइवा यही स्नेह यही ममता यही मनीष पणिया प्रत्येक मनीष भितर पुरुषोत्तम चेतना रही से ही पुरुषोत्तम चेतना ही कली युगर एकमात्र सत्य
1: आउ गोटे कथा आम बर्तमान देखा पाऊ जो वर्षा टिके सामान्य झिपिझिपि बिंदु बिंदु पड़ूला ता बर्तमान आउ टिके बढ़ी जहाँकि कौन व्यवस्था को कौन कष्ट देना मात्र वर्षा बिंदु टिके अधिक पड़ू जो गहली रही से गहली रे कहीं कष्ट अनुभव करें ना से जमी सी मध्य भक्ति करुंच महाप्रभु को स्वयं इंद्र देव से वर्षा मध्यम कौन कह
0: तो यही तो माने कते सुंदर परिवेश टोपे टोपे वर्षा पड़ू इंद्र देवता कृपा प्रदान करुचंदी भी देखुं जे मोर भक्त माने तोले बड़दाण्ड एणे तेणे जावास करग को जाछक जा पर हाथ छंदा छंदे हाथ धराधरी जाऊँगी माँ भौनी माने पकईक बसीगले केते कष्ट करे दिन मानटा एक ठिया तेणु तर धैर्य रोना साहस रोना परस्पर भितर ठाकुर बड़ ठाकुर यो डालध्वज रथ में बड़ ठाकुर बलभद्र बलिहार भुज जे कि अनंत जे कि अनंत स्वरूप बड़ ठाकुर बलभद्र स्वरूप जे श्रीमंदिर विराजमान कर ठाकुर जगत कल्याण पाई कहीं ना जो कहते आम आलोचना करुले जगन्नाथ ना सबकि मंदिर हूँ श्रीमंदिर लक्ष्मीकर मंदिर किंतु बड़ ठाकुर बलभद्र ना खाता खतियान सबू देखिए खाता खतियान हूँ बड़ ठाकुर बलभद्रंर किंतु समस्ते कहते जगन्नाथ क्षेत्र जगन्नाथ धाम तेणु ये बड़ ठाकुर बलभद्रपर आपणकर मत कौन
1: अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्युधर वासुदेव अनंत रूपेण विनिजोदयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते साक्षात अनंत महाप्रभु बड़ भाई बलभद्र से अनंत शिरसी जहाँ मस्तक अनंत फणा सेवा करनंतर साक्षात दर्शन आम पाचे से वर्तमान बलभद्र महाप्रभु से तालध्वज रथ आगक आसी जाऊँगी जहाँ आम अनुभव करुचे महाप्रभुंर जो गति थिला पूर्वर ताहा टिके शिथिल हो जाइछि आउ इति अवसर रे भक्त मानकर जो प्रेम भक्त मानकर जो भक्ति भक्त मानकर महाप्रभु सहित मिसिबार जो उत्कंठा ताहा अति प्राबल्य हो जाइछि
0: भगवान बड़ ठाकुर बलभद्रंकर हल आउ मुसल जो हल मुसल सूचाई दिए ये हूँ कृषि प्रतीक कृषि सभ्यतार प्रतीक भारत वर्ष ओडिशा हूँ कृषि प्रधान देश चाष हूँ आम मूल जीविका हूँ चाष तेणु भगवान आमको सब ज्ञान दौंजे कृषिकर्म कर चाष अच्छी जार बास अच्छी तहार चाषी भाई जगह दुनिया को आहार यही ज्ञान बड़ ठाकुर बलभद्र आमको दौंजे आम चाष करवा खटवा खाइबा कर्म करवा जदि अलसुआ आमको भगवान किसी देवे ना यो ज्ञान बड़ ठाकुर बलभद्र जे कि कृषि प्रतीक जे कि हल धर एवं जी हूँ शेष नाग जी हूँ जे एभली विचारवंत बड़ ठाकुर बलभद्र बलर जमी बलियान एवं भद्रर मध्य भद्रतार ठाकुर तेणु बल एवं भद्र उभयर समन्वयर देवता हूँ कली युगर सत्य सनातन परम ब्रह्म स्वरूप बड़ ठाकुर बलभद्र तालध्वज रथरे आसुचंती वर्तमान श्रीमंदिर
1: जो परि भाव भक्त माने श्रद्धालु माने धाई जाउछंती आग को अर्थात गुंडीचा मंदिर आड़ को मुह कर दौड़ुचंती यार अर्थ हेउची से माने जानिबा दरकार आम आगरे केते श्रद्धालु रही आमे बा रथर स्पर्श आमे बा रथ दौड़ीर स्पर्श किपरि पाइबू किंतु केही किछि बुझिबा को नाराज कहीं गोटे कथा रही भक्ति भगवान ये दुईटी कथा छड़ा कहीं आउ किसी जानती ना तेणु पाद आग को टाणी नौ जाणी नाहत बाट चलिए
0: वर्तमान ठाकुर जो बड़ संघ पाखे अटकी जातमान ভাবুচন্তি ঠাকুর যে মো সান ভাই মো ভৌণী কোটি অছন্তি তেণু সে আসিলে মু যিবি তেণু বড় ভাই সান ভাই প্রতি যে স্নেহ মমতা আমার ওড়িয়া ঘরে অছি ক্ষীর যদি খাই বসিবু ঘরে থিব গাই যুদ্ধ যদি করি বসিবু সঙ্গে থিব ভাই তেণু ভাই ভাইর স্নেহ মমতা বোধে ভুলি পার না তেণু বড় ঠাকুর তালধ্বজ রথ অটকি যাচ্ছি
1: ও ভৌণী কোটি অছন্তি আজি যৌথ পরিবার বৈকুণ্ঠ সমান আহা অটে সেই ঘর
0: পরস্পর স্নেহ যহি থায়ে নিরন্তর
1: সেই যৌথ পরিবার সূচক সেই যে বার্তা কু মহাপ্রভু বিশ্ববাসী উদ্দেশ্যে আজি ভাই ভৌণী সহ আসি জনাই দেছেন মু করিবি গুপ্ত গুণ্ডিচা মু যেতে কথা অঙ্গীকার করিবি কবাট পড়ি যাব পছে নীলাদ্রি বিজয় দিন যিয়ে মতে যা ভাবু কিন্তু গোটে পরিবার কথা কু মু পছরে পকাই পারিবে না মহাপ্রভু আজি কেড়ে সুন্দর দিব্য লীলা লগাইছেন এ বড়দাণ্ডে প্রকৃতরে অনুভব হচ্ছে সেদিনর লেখা আজির দৃশ্য পতিত পাবন অর্থে প্রাসাদ বাহার মহাপ্রভু আপনার এই যে ঘোষ যাত্রা আপনার এই বাহুড়া যাত্রা অতি আনন্দের
0: পরিপূর্ণ
1: আমি শ্রোতা বন্ধু আপন মানুষ বর্তমান এই দ্বিতীয় কেন্দ্রর আমি ফেরাই নেছু শ্রদ্ধাবলী কু যেঠার শ্রদ্ধা বিতরণ করিবে আমার ঘোষক মানে
0: জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ
2: জয় মা দেবী সুভদ্রা জয় জগন্নাথঙ্কর মহাপ্রভুঙ্কর যে বড় ভাই বর্তমান আগেরে গলেনি পড়িয়া কৌছন্তি মা সুভদ্রাঙ্কু বাসিলানি পোড় পিঠা মাউসী করিছি অপেক্ষা সুভদ্রা ভৌণী জগন্নাথঙ্কু বেগি বেগি উঠা সেই সহল সহল নীতিরে বর্তমানে সেই মাউসী মা মন্দির অভিমুখে বড় ভাই বলভদ্র চালিলে আর্ষার টিকিয়ে টিকিয়ে বারিপাদ মধ্য বর্তমান অনুভব হলো এয়ারি ভিতরে আমি দেখিপারুছু প্রশাসনিক স্তরের আউ গোটিয়ে সুন্দর ব্যবস্থা যেমিতি ভক্ত মানঙ্কর মস্তক বর্ষার জলরে ন তিন্তিবা পাই সুন্দর ভাবরে গোটিয়ে গোটিয়ে যে জরি মধ্যে সমস্ত বিতরণ করা যাচ্ছি সমস্তে সে জরি কু টাণি ওটারে নিয়ে যাচ্ছেন প্রভুঙ্কর প্রসাদ পরি কিঞ্চিত মধ্যে আমমানকু ভ্রম সৃষ্টি হল সতে যেপরি প্রভুঙ্কর প্রসাদ পাইবা পাই গোটে চালিছে প্রতিযোগিতা কিন্তু বাস্তবরে তা নুহে জরি খণ্ডিয়ে নেই সমস্তে নিজের মস্তকরে তাহাকু পিন্ধুছন্তি আউ এপটে প্রস্তুত হলে মা সুভদ্রাঙ্কর রথ যে রথরে রোচিকা মোচিকা জিতা অপরাজিতা নামক চারিগোটি যে অশ্ব তাহা যোচা সরিলা ডাহুক অতি সুন্দর ভাবরে দুই পটে ঘোড়ার রহিলে বেতকু ধরি বর্তমান সমস্ত শ্রদ্ধাড়ু ভক্ত সে বাজিলা বিজে কাহালি ঘণ্ট ঘণ্টুঙ্কর সে ঘোর ঘর নাথ যোগ মায়া মহাদেবী মহামায়া নমস্তুতে ঈশ্বরী অঙ্গ ভঞ্জনম ব্রহ্মস্থান স্থিতা সদা সে জীব চৈতন্য ব্রহ্ম চৈতন্যকু যে একত্র বন্ধনরে বান্ধি পারন্তি সেই মায়া হিরণ্য গর্ভ সম্ভূতা সি হচ্ছেন সে নির্লিপ্তা মা জগজ্জননী সুভদ্রা রথর সেই ঘণ্টুয়া মানঙ্কর ঘণ্ট নাদরে ভক্ত মানে যদিও সেই দৌড়ি যাহা শঙ্খ চূড় নামক যে রজু বন্ধা যাইছি তাহা জগন্নাথঙ্ক রথরে আউ ইয়ে হচ্ছে স্বর্ণ চূড় নামক যে রজু তাহাকে টাণি আনিলে তাহা কিছু সময় পাই রহি যাইছিলা পুনর্বার ঘণ্টুয়াঙ্কর ঘর ঘর নাদ সে ঘণ্ট নাদরে মা চালি আসুছন্তি দেবী দেবী শক্তি যে দর্প দলনকারী সমস্ত আসরিক প্রবৃত্তি যিয়ে দর্পিত ভাবরে দলন করে দিয়ে সেই মা জগজ্জননী দেবী সুভদ্রাঙ্কর রথ সুন্দর ভাবরে এই শরধা বালির প্রাঙ্গণরে আগকু আগকু গড়ি যাচ্ছি আউ গড়ি যাচ্ছি ভক্ত মানে আনন্দরে শরধা বালির সেই ধূলি মস্তকরে অর্পণ করি মা এ সংসার কু তুমি ঢাঙ্কি রকিথা তোমার পণত কানিরে এ সংসারর সমস্ত ভক্ত আপনার পুত্র সদৃশ আ সেই সমস্ত জনতা সমস্ত ভক্তকু আপনার সে কারুণ্য পাথ নিধি আপনার পরা হচ্ছেন যোগী আপনার হচ্ছেন সেই ত্যাগী আপনার হচ্ছেন জয় দেবী জগত মাতা প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরী কার্যকারিণী কর্তৃত্বম সর্বশক্তি নমস্তুতে হে মা জগদম্বে আপনার হচ্ছেন সর্বশক্তির আধার স্বরূপ মা সেই মাঙ্কর সে ঘণ্ট নাদ ঘণ্টুয়াঙ্কর পুণি বাজিলা সেই ঘণ্ট আহা যে ঘণ্টর বাদল মধ্যে স্বতন্ত্র প্রকারর পহণ্ডি বড়রে ঘণ্ট বাদ্য আউ বর্তমানর ঘণ্টর নাদ যদি আপনার শ্রবণ করিবে নিশ্চিত ভাবরে তাহা মন ভিতরে গোটে এভাবে ভাব জাগ্রত করিব যাহা आमको आह्लादित करिबो आमर मन प्राण को एकीभूत करी समस्त शक्ति समस्त सत्ता मांगर पादरे आमे नियोजित हेजिबा एडी गोटी लोक कथा मने पड़े ये वर्तमान रो जो शिक्षेत्र रो जो परिवेश शिक्षेत्र रो वातावरण ए भक्त मानक भितर जो आवेग कि सुंदर भाव में प्रशासनिक स्तर में व्यवस्था करा जाएगी गोटे गोटे कागज को जो मुचुला करी बाड़े पकाउं भक्त मानक तार भितर पाग अनुकूल को अनेक लक्ष्य करी आमर गोटे लोकगीत प्रचलित अच्छी आषाढ़ मासे सखी मेघ घड़ घड़ी बाहर ले प्रभु जे नंदी घोष चढ़ी नंदी घोष रथे जे नंदर नंदन तालध्वज रथे निजे भाई बलराम देवी रथ चढ़ी न सुभद्रा गमन सुभद्रा सहित विजय चक्र सुदर्शन जो चक्रराज सुदर्शन ये माँ देवी सुभद्रा रथरे संयुक्त होती शक्ति सहित शक्ति संजोग जहाँ जीव सहित परमर मिलन भक्त सहित भगवान मिलन भाव सहित भाव हूँ जगन्नाथ प्रतीक विश्वास हूँ बलभद्र प्रतीक विश्वास भाव को जी जाग्रत करेतन शक्ति आज समस्त श्रद्धालु मानकर मन जो मन भितर से शक्ति नुहे भक्तिर सुह छुटे दौंती से भक्ति धारा रे भक्तिर से रजुरे बांधि हो आगो को बढ़ी जाउछंती पुणी किंचित रही जाउछंती कारण पछरे सान भाई ए त्रिभुवन ईश्वर अपेक्षा करिछंती निर्देश को भौणी जेतबले आगो को चली जेबे बड़ शंख निकटवर्ती हेबे जो बड़ शंख रे अतीत रे दिने जो शंखुआ नदी मालिनी बा जहार शंखुआ नदी रो गोटिए धार मालिनी नदी प्रवाहित होउथिले एवं सेतबले छ गोटी रथ होउथिले से छ गोटी रथ आज तीन गोटी रथ रे परिवर्तित होइछंती आ आमे देखि पारु श्रोता बंधु घंटुआ माने जेमती आसुथिले पहंडी रे ठाकुर झुली झुली आगो को पछ को हली जाउथिले घंटुआ माने मध्य सेई परि भाबरे झुली झुली घंट वादन करुछंती आ पताका धरिछंती जो बरकंदा जो बोली जहां को मध्य कुहा जाए सीए मध्य घंटुआ रो ताळे ताळे घंटर से उद्घोषण रो ताळे ताळे से नाली पताका को सुंदर भाबरे दोहलाउछंती जहां होउची जे रथ चालिबार जो आह्वान आ आह्वान भितर आगे अनेक भक्त ये श्रीक्षेत्र ये जो श्रद्धा बाली रु आम जो ठाए पर्यंत आमर आखि दृष्टि आरूढ़ खाली मुंड माल माल सते जपर प्रतीयमान हो जन समुद्र भितर तीन गोटी रथ जहाँ बर्तमान पोत सदृश आग पछ हो रही अच्छा गोटे सुंदर सड़क धारा रे जो धारा भितर यात्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तुम सारथिवीति मन प्रगमेव च आम कहते ना टिके पूर्वर मन बड़दाण्डे देख विजय जगन्नाथ ये जगन्नाथ बड़दाण्डे अच्छा सत किंतु ये रथ जो चली ये रथ जो रथ हूँ शरीर से शरीर भितर आज प्रभु निजे स्वयं विराजमान करौंदर्यशाणी से माँगर रथ विष्णु माया महामाया ब्रह्म शक्ति सुदुर्धरा लक्ष्मी कृष्णानुजा तेज रूप सौंदर्य शालिनी प्रभा मोहयंती जगद्धात्री विष्णु भावानुसारिणी हृदय पद्मासन संस्था चराचर विमोहिनी ए समग्र विश्व को आपणार कर जीए माया जो मोह माया सीए अगम्य सी हूँ अबध्य से शोभामयी श्री संयुक्त कृष्णंकर से होचंती अनुजा से अनुजांकर रथ टिकिए आग को जितेबाला टणा हो सारी श्रद्धा बाली टिकिए आग को गड़ी जाइंट किंतु श्रद्धालु माने जो सुभद्रा रथ को टाणुते से माने सेठारे रथ को टिकिए नाकु अटकई दे वर्तमान जगन्नाथ रथ अभिमुखे यात्रा करुछंती काहेकि ना जगन्नाथ जहांकर रथ को छुई देले स्पर्श करदे मन भितर गोटे अपूर्व आनंद खेली जुए कारण दुख प्रभु से देखते सुख सीए मध्य आनंदर हेतु सीए तांको बिना आउ किछि अछि तो बिना केमिति विचुति जीवन आपणार बोली के नाही रे भक्ति प्रेम रे तोते तो पाइछु जीवन रो साथी दुहिरे हे जगन्नाथ आपण तो हेउछन्ति ए संसार रो प्रत्येक प्राणर प्राण संचारिका शक्ति आपण नथिले ए संसार नथंता ए संसार सुंदर जो धरा केवल आपणकर आशीर्वाद रे आउ आगो को आमे देखुछु वर्तमान सालबेगंकर पीठ जोटी भक्त सालबेगर जो रही बड़गंडी ठारे से सालबेगर पीठ आड़ बड़ भाई बलभद्रंकर बलियार भुजंकर तालध्वज रथ अग्रसर होती आउ श्रद्धा बालीर किछि आगकु वर्तमान माँ देवी सुभद्रांकर रथ टणा हेइछि एवं अपेक्षा करिछन्ति नंदीघोष रथ सुंदर भावरे वर्तमान दौड़ी संजोग चलिब घोड़ा मध्य बंधा हेइ सारिलाणि केवल दौड़ी जगन्नाथंकर रथरे लागिब एवं एहा परे रथ टणा हेबा पई निर्देश दिया जिव जहाँ फलरे नंदीघोष रथ आगको बढ़ी चलिए आ गुंडीचा मंडपर दृश्य आम देखिपु नाकचणा दृश्य जोबले जो नाकचणा सकाल समय एत सुंदर भाव कोलाहलमय हो उठी आज से नाकचणा द्वार जो रही नाकचणा मंड मंदिर जो द्वार ता बर्तमान बंद हो गला आउ किछि समय पर आउ जगन्नाथ रथ चलिबो तबे मु नै जाउछि ए प्रथम बूथ रे आम निकट रे थिबा आमर डॉक्टर नरेश दास महोदय निकट रु आमे प्रभुंकर लीला यात्रा विषय को टिके सुनिबा जय जगन्नाथ
3: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान श्री बलभद्रंकर तालध्वज रथ बड़शंख अतिक्रम करिगलेनि एवं आमर देवी सुभद्रांकर दर्पदलन रथ से मध्य बस स्टैंड ठारु टिके टिके आगुक जाकर अटकी रही ए पर्यंत से श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो नंदीघोष रथ ता प्रस्तुति पथरे अर्थात संपूर्ण भाव प्रस्तुत होकर अच्छा टिके आउ टिके आगुक गले माँ का रथ से रथ टणा जीव से महाप्रभु चाहिए रे बसंती भक्त मान को गहल को जिबे एबे मध्ये भक्त माने किछि किछि आगे रे अछंती किंतु जो महासमुद्र आगे रे अछि ये तो उपसागर महासागर भीतर को से प्रवेश करिवे जनसमुद्र भीतर को भगवान कहिछंती जे मोते भजई मुताकु भजई ये मोर नियत वाणी भक्ति जेणे जाई मोहि तेणे जाई न छाड़ई फालगुनी भक्त मोर देह अंतर नुहई तार मोर एक प्राण भक्त को विपत्ति पड़ई तहि मु उद्धरई अरुज अर्जुन वैष्णव माने मोहर कीर्तने दस पांच रुंड होई मोही तांक संगते बसी थाई मोते नचि नमती केही। भगवान श्री जगन्नाथ अपेक्षा करिछंती केतेबेले ताकर रथ टणा हब एवं सरदा बालीरु से धीरे धीरे धीरे धीरे बड़दाण्ड आड़ को अग्रसर हेबे एवं आहुरी बहुत कार्य रही मौसी माँ से पोड़पिठा बिल्कुल प्रस्तुत करके रखिंट जोबले प्रभु जीवे सेतबले से पोड़पिठा खुआबे एवं आहुरी गोटे बड़ काम हम जोबले श्रीनगर पाखे जा महाप्रभु पहुँचे तेणु बहुत कार्य रही आगरे दुई रथ से सीधा जा पहुँचे सिंहद्वार किंतु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथ जेतेबेले जाई पहुँचिब श्रीनगर निकटरे सेठारे से रहिबे एवं एही समय रे महालक्ष्मी ठाकुरानी चाहणी मंडप को आसीबे देखिबे जे महाप्रभुंकर एही पीत लोहित बर्णील जो नंदीघोष रथ से वर्तमान श्रीनगर निकटवर्ती हेलेणि तेणु से सीठू बाहरिबे बाहरिकरी आसीबे पालिंकी आसीबे सेवक मान गहन आसीबे बेश पाट मकुटा पिंधिथिबे एवं जेतेबेले से आसीबे सेतेबेले बलभद्रंक सम्मुख भागरे गोटे कपड़ा पड़िथिब तार कारण होउछि इया होउछन्ति देढ़सुर से भाई बहु तेणु देढ़सुर भाई बहुंकर जो संपर्क आपण आज यही जो रथ भेट समय आपण देखिबे तापर से अतिक्रम करी आसीबे नंदीघोष रथ निकट को महालक्ष्मी ठाकुरानी आज महालक्ष्मी ठाकुरानी आसला परे तांकर मानभंजन करिबा पई प्रक्रिया आरंभ हबो गजपति महाराजा से निजे टेकिकरी माँ को जगन्नाथ सहित मिलन करेबे ए दृश्य अति अपूर्व दृश्य ए आज अनुष्ठित हबो एवं महाप्रभु ठारु आज्ञामाला आसी तांको लागि करा जिवो आज्ञामाला पाइला परे शांति हेकि से जिबे किंतु तथापि मनरा कुहळिबो ताको मन जमा सफा हबनी काहे कि ना के भलिया काम कले प्रभु ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇକରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିକିରି ଫେରିଲେ ଏବଂ ଫେରିଲା ଫେରିକରି ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସନ୍ତେ। ପୁଣି ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରେ ସୁନାବେଶ, ସୁନାବେଶ ପରେ ଅଧରପଣା, ଅଧରପଣା ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ହେଲେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଗ ସେହିଦିନ ଶାନ୍ତ ହେବ ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ କରିବେ। ବଡ଼ ଦେଉଳର ଯେଉଁ ବଡ଼ କବାଟ ଖୋଲିବ, ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ସରିବ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଭଙ୍ଗ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ ସମୟ ନେବିନି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଘୋଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ ରଥ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
4: ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସାତ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ନବମ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପାଖାପାଖି ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦଳପଦନ ରଥ ଏହି ଶରଧାବାଲିର ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ରଥମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ ନହେଲେ ରଥଗୁଡ଼ିକ ଟଣା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ବଳଗଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣା ହେବ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣା ହେବାର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ରଥର ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଆହୁରି ତିନୋଟି ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁନାବେଶ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଧରପଣା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଏ ତିନିଟି ଯାକ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ପବିତ୍ର ପାବନ ଘୋଷଯାତ୍ରାର 2026 ମସିହାର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହୋଇଛେ। ଆକାଶବାଣୀର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ 1948 ମସିହାରେ ଆକାଶବାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନରୁ ଏହି ଧାରା ବିବରଣୀ କରିବାର ପବିତ୍ର ପାବନ ଅବସର ମହାପ୍ରଭୁ ଆକାଶବାଣୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 1948 ମସିହାରୁ 2015 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀ ପାଇଁ। ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀ 2015 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏବଂ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାବନ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଛୁ, ସେ ସୁଯୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆକାଶବାଣୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଅତୀତରୁ ଏ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସତୀର୍ଥ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ମହାରକ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଏଇ ଯେଉଁ ମହନୀୟ ପରମ୍ପରା, ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଣ, ସେହି ଉତ୍ତରଣ ଆଜି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବଂ ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ଯେତେ ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେ ସେତେ ଗୃହୀତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ସଦ୍ଭାବନା, ସୌହୃଦୟତା ଏସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ନିଜ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକତାର ବିନାଶ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାର ଉଦ୍ଭବ, ଏ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏତେ ଶୁଭ୍ର ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଏତେ ପରିତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ ମଣିଷ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଜନତା ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ରଥମାନଙ୍କ ରଜୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନା ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥରେ ଯେଉଁ ରଜୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ताको स्पर्श कले महाप्रभुंकर स्पर्श आम पाखक आसिब एवं आमर स्पर्श महाप्रभुंक पाखु जीव ए जो आमर स्पर्श महाप्रभुंक पाखु जीव तांक स्पर्श आम पाखक आसिब एटा होउचे प्रतीकात्मक भावरे जीव एवं परमर मिलन परम जेतेबेले निजको प्रसारित कर दिंती से जीव आड़क अग्रसर हो जाती तेणु श्री अरविंद कही जितेबले आम भगवान प्रति गोटे पद अग्रसर हो भगवान आम पाखु तीन पद अग्रसर हमें कारण से करुणा वरुणालय तांकर आम प्रति असीम करुणा केवल आम प्रति नुह सकल जगतर विश्ववासी प्रति तांकर संप्रदाय वर्ण जाति ए सब निर्विशेष समस्त प्रति तांकर जो अपार करुणा अच्छी से करुणार प्रतीक भाव तांकर रथर रज्जु आज प्रसारित होई बड़दाण्ड को जहाँ को स्पर्श करने आम समस्त मन भितर एत व्याकुलता एत उत्कंठा आज धारा बरणी एवं अतीतर धारा बरणी मानक जो मैंने सहयोग करते आज विशेषकर बाहुड़ा धारा बरणी आपण पहुँचवाई जे दुईट आकाशवाणी दुईट विभाग जो सहयोग कर विभाग में प्रथम विभाग हूँ कार्यक्रम विभाग से श्रीजुक्त जयकिशोर नागर श्रीमंत पटनायक दिलीप कुमार नायक विनय कुमार सामंतराय प्रज्ञा पारमिता साहू राजीव कुमार महंत सत्यस्मिता बेहरा अक्षय कुमार सेठी एवं वैषयिक विभाग रे जो माने कार्य करथिले से माने होचंदी संजुलता नायक सिलेन पटनायक सुभाषिष राजगुरु महापात्र संबित कुमार पसायत राजेंद्र कुमार शतपथी त्रिलोचन बेहरा विजित कुमार मिश्र कृष्णदयाल त्रिपाठी सनातन मुर्मू ए समस्तंकर नाम आमे नवार कारण होची ए समस्तंकर दिन राति अनर्गल परिश्रम फलरे ए रथयात्रार धारा बरणी आपणक पाखरे आमे पहुंचेचु एवं ता सहित आमर जो माने ए धारा बरणी दवापाई जो विद्वान माने आमर एठे उपस्थित होइतिले डॉक्टर हरिहर कानुनगो श्रीजुक्त प्रताप कुमार त्रिपाठी एवं ता सहित डॉक्टर कल्याणी नंदी डॉक्टर नरेश चंद्र दास ए समस्त महाशय मानको मध्य आकाशवाणी तरफ रु अजस्र साधुवाद एवं आपण मानकु आमे आकाशवाणी स्टूडियो को फेरै नबा पूर्वरु गोटे कथा मने पड़ुछि कदाचित कालिदी ए जो शंकराचार्य कृत ए जो काल जगन्नाथ अष्टकर नवै प्रार्थ्यम राज्यम नच कनक माणिक्य विभवं नजाचेहं रम्यं सकल जन काम्यां बरवधं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे हे प्रभु जगन्नाथ हे महाबाहु तुम्हें आम समस्त नयन पथ गामी होता आमर समस्त दृष्टि सबुबले एमती उद्भासित होता प्रभु तुम विराम मूर्ति से मूर्ति को देखी देखी आमर जीवन अवसान पर्यंत आम तुमको ही देखु था ए प्रकार करुणा कर श्रोताबंधु महाप्रभु श्री जगन्नाथ नंदीघोष रथ वर्तमान टणा हाँपी प्रस्तुत होती कितु तार से पवित्र धारा बरणी आपण को आम आवापाई आम पाखे समय ना केवल सूचना आमको दौचु घंट घंटा कहली आप शुणुंट गोटे सूचना आपण को देकर यवरणी को आम शेष करूँ जे महाप्रभु नंदीघोष रथ बर्तमान टणा है भक्त मैंने रजुधरी महाप्रभु रथ को टाणवा आरंभ कले आमर धारा बरणी को शेष कर जो मैंने शुणी आमको सका साढ़े आठटू आपण मान समस्त अशेष कृतज्ञता एवं भविष्य में अनुराग एवं सहयोग आकाशवाणी प्रति रहिबो एक प्रकार आपण को अनुरोध ज्ञापन करी धारा बरणी ये शेष कर आकाशवाणी कटक केन्द्र स्टूडियो को फेरई नौ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
5: शुणुले शंखक्षेत्र पुरी ठारे अनुष्ठित महाप्रभु श्रीजगन्नाथ पवित्र बाहुड़ा यात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारावरणी धारावरणी प्रदान करते डॉ शांतनु कुमार रथ डॉ नरेश चंद्र दास डॉ कल्याणी नंदी डॉ हरिहर कानुनगो एवं श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
6: ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ରିଲେଗୋଲୋ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୋଡା। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की 3री और 4थी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, और केमिकल भी सेमी

0: कंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
3: आकाशवाणी संबलपुर आजिर मुख्य खबर संगे मुई बंदिता मिश्र। भक्तिमय परिवेश भित्रे आज पुरीठाने अनुष्ठित होउचे महापुरु मानकर बाहुडा जात्रा। नौ दिन रा श्रीगुंडीचा जात्रा सारिकर आज श्रीजीव जन्मवेदीनु फिरुचन रत्नवेदिके आयबाका रथ उपरे सुनावेश थी लक्ष लक्ष भक्तंकु दर्शन देवे चतुर्धा मूर्ति। आयबार रविवार मन की बात कार्यक्रम थी देशवासींकर सहित भाव विनिमय करबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मिलनी कक्षन एआई डाटा सेंटर पार्क विश्वस्तरीय जोगाण केन्द्र थापना लगी एचसीएल टेक सांगे गोटे बुझामणा पत्र स्वाक्षर कले राज्य सरकार। देशर अर्थनीति और विकास प्रक्रिया थी आयकर गुरुत्वपूर्ण अवदान विषय थी लोकंकर भितरे सचेतनता सृष्टि उद्देश्य थी आज पालन कराउे जातीय आयकर दिवस। पवित्र आषाढ़ मासर दशमी तिथिने तिनि महाप्रुंकर बाहुडा जात्रा सुवर्णपुर जिलार पाताली श्रीक्षेत्र सहित जिलार भिन भिन जगाने अनुष्ठित। बलांगीर जिलाने आज विभागीय कार्यक्रम सरकारी योजनार व्यापक प्रचार प्रसार आउ जिला सूचना और लोकसंपर्क कार्यालय समीक्षा कले विभाग जुग्म निर्देशक। सतायु स्वाधीनता संग्रामी बिम्बाधर मुदुलींकर मृत्युने शोक प्रकाश कले राज्यपाल मुख्यमंत्री। जम्मू काश्मीर ठाने लगातार वर्षा होउथबानु शनिवार दिन अमरनाथ जात्रा सहित सबु जात्रा के स्थगित रखला प्रशासन। झारसुगुड़ा जिलाने एसआईआर 2026 अंतर्गत पोस्ट ड्राफ्ट कार्यावली समीक्षा कले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ अधिकारी। आज बंद है हीराकुद डैम्र 4 गेट यहाँ 12 गेट देकर छड़ा जाउछे बढ़ी पैन आउ समुद्र अशांत रहुथबानु समुद्र भितर के जीवार के मत्स्यजीवी मानकु मना कला पाणीपाग विभाग। 50-60 किलोमीटर स्पीड ने पवन बुहिबा आउ अशांत रहबा समुद्र बोली कालठानु आइबा 27 तारीख तक सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एचनीर मुखिया खबर इनसेसला जुहार।

0: ଆକାଶବାଣୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ।
1: मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
2: सबसे बड़ी खास बात है इस कार्यक्रम की वो यही है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत अनौपचारिक होकर बातचीत करते हैं।
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
3: पूरा देश पूरा लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके अनुभवों से वाकिफ हो रहे हैं।
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
4: जब भी रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम शुरू होता है सुबह से ही हम सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं।
1: श्रोताओं, आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप में पोस्ट कर सकते हैं।
5: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है।
6: सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है।
किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी।
राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल

नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: चंदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है, तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओ, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
3: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
2: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
3: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
2: कैलपोद उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंड बट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
3: श्रोताओं, कैलपोद उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
2: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
3: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
3: दो मेंढकों की यात्रा।
5: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
6: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
5: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
6: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
7: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
6: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
5: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
6: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
7: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
6: भाई वाह।
7: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
6: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
7: अच्छा,
6: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
7: वाह,
6: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
7: ये तो है।
5: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
6: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
7: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
6: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
7: हैं? वो कैसे?
6: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
7: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
6: वो कैसे?
7: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
6: भाई वाह!
8: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
7: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए,
6: चारों टांगे दुख रही हैं।
7: ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
6: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
7: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
6: मैं क्योटो देखूंगा
7: और मैं ओसाका।
6: क्यों नहीं, चलो
7: चलो।
8: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
6: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
7: चलो
6: संभल कर।
7: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
6: बचे।
8: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
6: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
7: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
6: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
7: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
6: हाँ चलो।
8: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई?

0: किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
1: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है।
4: जी,
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी, आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है।
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे।
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है, नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या।
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ?

0: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
1: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
0: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
1: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
0: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
1: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
0: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
1: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है।
0: देख राहिल, कस्टम वालों को जानूं या ना जानूं, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूं। बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इन्हों की टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगी आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
2: आप
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप?
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
0: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाए।
1: ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पियेंगे क्या आप?
0: नहीं,
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ।
0: जी?
3: मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
3: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: शुणुले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲି କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
4: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
2: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
6: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
2: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन

0: गठबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP

0: ଖେଳ ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନା ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ରଥ।
1: मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
2: सबसे बड़ी खास बात है इस कार्यक्रम की वो यही है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत अनौपचारिक होकर बातचीत करते हैं।
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
3: पूरा देश पूरा लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके अनुभवों से वाकिफ हो रहे हैं।
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
4: जब भी रविवार दिन मन की बात कार्यक्रम शुरू होता है सुबह से ही हम सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं।
1: श्रोताओं, आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप में पोस्ट कर सकते हैं।
5: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है।
6: सुबह 11 बजे
1: मन की बात।
7: ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କିଷାନ ଉପଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା କିଷାନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଷାନ ଉପଭାଷାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ନାତକ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବେତାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ବୟସ ଜୁନ୍ 16 2026 ସୁଦ୍ଧା 20-50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ରଖିଥିବେ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର

0: नमस्ते शंख चक्र हस्त।
1: निधि सांते घरे अछ
2: के दासिया? अरे आ बसी बसी आज तोरी कथा तुम भावुले आली सका श्रीक्षेत्र बाहरी पड़े नवजौवन दर्शन करी रात्रि विश्राम नहीं होता पर दिन दियों को रथ में देखी गुंडीचावासी सका सका गाँव को फेरी आसता।
1: हाँ सांते से लगे पड़ी लुगा गामुछा बुणी सारी

0: प्रभु प्रभु मोर जीवन कृतार्थ हेइछि प्रभु
1: कि बर मागुछ मागदासिया
0: ना मोर किछि लोडा नै प्रभु केवल गोटे मिनती ए अछब बाउरी दासिया जेते बेले जहा दब ताहा तमे श्रीहस्तरे ग्रहण करिवो प्रभु अछब बोली घृणा करी दूरे दब नै
1: तथास्तु भक्त दासिया
2: निद बाउला रे ये कि स्वप्न देखली तेबे कोनो सत्रे प्रभु श्री जगन्नाथ इच्छार बाउरी डाकरे प्रीत होइछंती नीलचक्रु दश अवतार बोली आसी आशीर्वाद करी जाउछंती बड़ दांड उपरे
0: हाँ हाँ प्रभु तमे जगतर नाथ प्रभु अंतर्जामी भक्तर मन जानी सब पूरण करिछ सब पूरण करिछ

0: ए दासिया तबे हम पागल पर हो कहीं
1: मु पागल हो जाए सारे मु पागल हो जाए देखुना सुरंग दिशे हांडी धार मध्य धवल पेज सर ता मध्य साग दिशे कला यही तो श्वेत पद्म डोला
0: ओहो बुझिले अरे दासिया दासिया ए भाव पाइलु तो कहीं कृपा की कले भावग्रही आमे तो ब्राह्मण गोसाई ए भाव कहीं छुई नहीं कि बुझे ये दिन जन तोते प्रसन्न भगवान
2: कौन कौच सांते मु किछ बुझि पार नहीं सांते
0: तो जीवन धन्य हो जाई छी कमली तो जीवन धन्य हो छी आमे ब्राह्मण गोसाई हे केते सेवा पूजा करी जो भाव पाइनु ता दासिया पाइछी से जन श्रेष्ठ भक्त
1: निधि सांते
0: अरे तू मत शांत डाक ना रे दास तू मोठ बड़ छोट कूल जात हेले तो स्थान अनेक उच्चरे एबे तू भक्त दासिया
2: आ गुणिया डाकिबिनी सांते
0: गुणिया कौन करिवो कमले गुणिया कौन करिवो निजे दासिया तो बड़ गुणिया तू पेज उपर सर काढ़ दे शाग पलाक उठे अलग कर दे से आनंद भोजन कर
2: सतरे तेबे मु शाग को पेज उपर काढ़ के अलग कर दउछि सांते
0: बस एथर भोजन कर दास
1: दियो दियो कमली साग पेज को अलग अलग दियो मु खाइबी

0: সময় বর্তমান রাতে 11টা।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মোহাম্মদ জুবের। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि

0: बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद शुणुले रेलकोलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी संबलपुर शुणंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
2: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई कृतांजलि त्रिपाठी। प्रश्नपत्र प्रघट आउ परीक्षा समिति अनियमितता अटकाबार के फास्ट्राक कोर्ट स्थापना के नेकरी चिठा बिल के केन्द्र कैबिनेटर अनुमोदन। देशे तीनटा रासायनिक पार्क प्रतिष्ठा लागि भव्य रसायन योजना के मिलला मंजूरी। नूआदिल्ली न केन्द्रमंत्री जेपी नड्डा डॉ जितेन्द्र सिंह आउ सीजेपी प्रतिनिधि दल भित्रे हेला आलोचना। पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद के समर्थन बंद नाई करबार तक स्थगित रहबा सिंधु जल चुक्ति फटिक कला भारत। भिन भिन प्रसंगे नेकरी विरोधी दलर सदस्य मानकर हो हल्ला जारी रहबारनु संसदर दुई गृह आयबा सोमवार तक हेला मुलतबी। बाहुड़ा जात्रा थी आज पूरी सिंहद्वार न पहुंचिल्या बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ महाप्रभुकर रथ। आयबा काल रथ उपरे सुनावेस्ती भक्त मानकु दर्शन देबे चतुर्धा मूर्ति। राज्य प्रतिष्ठा हेबा ग्लोबाल डेवलपमेंट सेन्टर आउ एआई पार्क सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ती नुआ विप्लवर हेचे शुभारंभ कहले मुख्यमंत्री। राज्य सार्वजनीन ईवी चार्जिंग स्टेशन रो विकास लागी पीएमई ड्राइव के केन्द्र सरकार मिलला मंजूरी। भारतीय रेल रे यात्री मानकर सुरक्षा के सबुठानो जह प्राथमिकता दिया जाउचे बोली कहिचन रेल मंत्री। भारत और रोमानिया भितरे अर्थनैतिक आ पुंजीनिवेश संपर्क के बढ़ावा लगी आह्वान देले राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री आबा रविवार दिन सकाल 11 बजे आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम जरिए देश आउ दुनिया सारा लुक्कर संगे करबे भाव दियानिया। देशर अर्थनीति आ विकास प्रक्रिया थी आयकर गुरुत्वपूर्ण अवदान बाबदे सचेत